हम अकशवरों तिमन रस कलांगे आय तक खा फिर भी मी हूँ निकं हुरे तिमन रस कलांगे एवरे नरक है वद्दवा हुशी में एवरेंगे हंतर रो फिलज्जे कुम में हिंदकु एवरेंगे हंतं एनुं हंतक का बदल कुरब में ऐ एवरें अजाब गे रह लिबग तुम टक हम अकशवरों अल्लाह ही अजीज वंत हकीम वंत रस कलांगे खम गावे।

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namadaki e namatan agulmen ada kurmuga farwatirumga sobun madama qiyame duhun agulmenna emme bodu kamiyabi libigen dane amal namada behigotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam agulmenna bayan koddevani alaage amal tohge teren ena kuffawa kankamuge teren emme furtama qiyame duhun hisab billeve hushi namada behigotunne ए नमादु के हिसाब और अंगलों वेज कम अवानमा ए ना कामयाब वे फलाहुली बिच्छे माने कि सुअर के गहुले रिकमगा ए ना वेगे हिंगेच्छे ए नमादुं मुनीवे मधु वेज कम अवानमा नोत ए नमादु हिसाब करेवे इरुगा ए नमादु फुरिहमे फानुआ कम अवानमा ए ना कि

ए नरक अन्न रुणिंग कुदि कुदि वेदां कैरी वेदे काफिरुंगे फौजे ए नरक एल्लवा कुम्मे फहरकु एतांगे बंडेरिंग एवरेन्ना सुवालु कुरव्वानेते इंजारु कुरव्वा रसूलकु त्यबै मीहुंगे गाता वडे नुगन्नवा हिये।